0: गुड न्यूज एफएम 105.1
1: विश्वास सुनैबाट आउँछ गुड न्यूज एफएम रेडियो 105.1 मेगाहर्ज।

कार्यक्रम विश्वासको वचन सुन्न नभुल्नुहोला। प्रत्येक आइतबार साँझ 6 बजेदेखि 36 सम्म र पुनः प्रसारण शनिबार साँझ 6 बजेदेखि 36 सम्म। पास्टर अनिल सुनामको साथमा।

0: गुड न्यूज एफएम 105 थोप्लो 1।
1: अब प्रस्तुत छ कार्यक्रम धन्यवाद बिहानी।
2: यो समय हो धन्यवाद बिहानी।